इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM.
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट. म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी.
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू. सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स. उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव.
3: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, आज की दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है. चारों तरफ उपदेश देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले और शास्त्रों की व्याख्या करने वाले लोग भरे पड़े हैं. हम भी रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इतना सब कुछ जानने और सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? हमारे भीतर की अशांति, हमारा क्रोध और हमारा लालच वैसा का वैसा ही क्यों बना रहता है? वजह साफ है, हम सिर्फ शब्दों के बाजार में जी रहे हैं. हमने उस ज्ञान को कभी अपने भीतर उतारा ही नहीं. कबीर साहब आज हमें इसी कोरी बातों की दुनिया से बाहर निकालकर अनुभव के उस सागर में ले जाने आए हैं, जहां पहुंचकर हम हर प्यास बुझ जाती हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम दार्शनिक सूत्र. कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझे काल. कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझे काल. कबीर प्याले प्रेम के, भरी भरी पीवे रसाल. कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझे काल.

0: भरी भरी पीवे रसाल रे साधो, भरी भरी पीवे रसाल। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कहत सुनत जग जात है। यह पूरा संसार से कहने और सुनने में, कोरी बातें और सिद्धांतों की चर्चा करने में ही अपनी पूरी उम्र गवा रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जीवन के सच से कोसों दूर हैं। नतीजा क्या होता है? विषय न सूझे काल, वे संसार की विषय यानी विषय वासनाओं और भौतिक सुखों में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने सिर पर मनराता हुआ काल यानी मृत्यु का सच दिखाई ही नहीं देता। वे भूल जाते हैं कि समय तेजी से बीत रहा है। लेकिन जो सच्चे साधक हैं, वे क्या करते हैं? अगली पंक्ति में कबीर अपना अनुभव बताते हैं, कबीर प्याले प्रेम के। कबीर कहते हैं कि इन व्यर्थ की बातों को छोड़कर मैंने तो उस परमात्मा के प्रेम का प्याला थाम लिया है। भरी भरी पीवे रसाल, और मैं उस रसाल यानी आनंद से भरे हुए रसपूर्ण प्रेम के प्याले को भर भर कर पी रहा हूँ। मेरी चेतना अब उस परम आनंद में डूब चुकी है। अगर हम इसे दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा शाब्दिक ज्ञान और आत्मानुभूति के अंतर को रेखांकित करता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा न तो बहुत प्रवचन देने से मिलती है और न ही बहुत बुद्धि से, वह तो केवल अनुभव का विषय है। विषय न सूझे काल, विषय न सूझे काल का अर्थ है कि जब मनुष्य केवल बुद्धि के स्तर पर जीता है तो उसका अहंकार और उसकी वासनाएं गहरी हो जाती हैं, जो उसे मृत्यु के सत्य से विमुख रखती हैं। कबीर समझा रहे हैं कि परमात्मा को जानना कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि यह तो हृदय का मार्ग है। जब तक मनुष्य प्रेम की उस भीतरी रस को नहीं चखता, तब तक उसका सारा ज्ञान केवल राख की ढेर की तरह निष्प्राण है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद को टटोलिए कि कहीं हम भी सिर्फ कहत सुनत यानी बातों के जाल में तो नहीं जी रहे हैं। हम दूसरों को जो उपदेश देते हैं, क्या हम खुद पर अमल भी करते हैं? इस संसार के भौतिक विषयों में उलझकर कहीं हम उस काल के चक्र को तो नहीं भूल गए हैं जो हर पल आगे बढ़ रहा है। आज कोशिश कीजिए इन कोरी बहसों और चर्चाओं से ऊपर उठने की, अपने भीतर उस परमात्मा के प्रति, उस सृष्टि के प्रति प्रेम भाव जगाइए। जब आप प्रेम के उस भीतरी प्याले को चखेंगे तो संसार की कड़वाहटें और वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अपनी चेतना को उस आनंद के रस से सराबोर होने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खानदेश, आपली मानसर।
2: हे मानव, इस भूतल पर सैकड़ों सहस्त्रों जीव जंतुओं के समान तेरा भी जन्म हुआ, तथापि इस संपूर्ण विश्व में मनुष्य का जन्मदाता कोई तो एक, यह सिद्धांत ही मूलतः भ्रामक कल्पनावादी कर्मकांड को बढ़ावा देने वाला, निरर्थक कल्पना को दौड़ाने वाला अविवेकी। इस संपूर्ण विश्व में एक मेंढक का जन्म हुआ और फैल गई चारों ओर मेंढक की औलाद। इस संपूर्ण विश्व में एक मच्छर का जन्म हुआ और फैल गई चारों ओर विश्व में मच्छरों की औलाद। ऐसे सैकड़ों सहस्त्र पशु पक्षियों की उत्क्रांत उत्पत्ति काल्पनिक पद्धति से परखना, उसे सैद्धांतिक रीति उद्घोषित करना सरासर गलत है। संपूर्ण भूतल पर प्राकृतिक रीति प्रमाण रूप से निर्मित अनगिनत पक्षी प्राणी जीव जंतुओं का जन्म हुआ, कुछ एक समान कुछ भिन्न, मानव का भी ऐसा ही कुछ नाम रूप का संयोग। इस भूमि पर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न डीएनए के प्रत्येक प्रदेशानुरूप निसर्ग नियम स्वरूप रंग रूप तुझे भिन्न भिन्न दिखते रहे। प्रदेश के प्रकारानुरूप कोई काला गोरा नकटा चपटा ऊंचा बौना, परंतु सब मनुष्य ही तेरे आचरण और उच्चारण से अभिव्यक्त हुआ बोली भाषा का आविष्कार, तेरा आदिम शब्द स्वर, इसलिए हजारों बोलियों का जन्म हुआ, कुछ प्रमाण भाषा बनकर स्थापित तो कुछ ऐसे हजारों बोलियों के लाखों करोड़ों लोगों के उच्चारणों से निर्देशित किया नाम नामाभिधान विविध घटकों स्थलों प्राणियों पक्षियों के तूने उच्चारित किए नाम विभिन्न पशुओं फसलों के वही वही नामाभिधान उनकी अपनी अपनी भाषाओं में रूढ़ होते गए, तब जन्मदाता निसर्ग का संवादी माध्यम परख परिचय का माध्यम तू ही बना। विविध भाषाओं में अभिव्यक्त संबोधन के रूप नहीं दिए तुझे किसी अदृश्य शक्ति ने रूढ़ बनाने के लिए, तू ही बना उनका नामोल्लेख करता जन्मदाता। तेरे सामर्थ्य के बल पर तूने संपूर्ण विश्व को जोड़ दिया, यातायात की शुरुआत हुई, व्यवहार और विचारों का आशय प्रकट होने लगा, मनुष्य मनुष्य का मेल मिलाप प्रदेश की सीमाओं का उल्लंघन करने लगा। आर्थिक स्थैर्य के लिए मनुष्य ने प्रदेश बदल दिए, राज्य बदल दिए और देश भी बदल दिए, और लेन देन हुआ विचारों संस्कारों संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ, कुछ काल्पनिक कुछ वास्तविक तो कुछ व्यवहारिक अस्तित्व के। हे मानव, तेरा बुद्धिवाद प्रबल, तेरी काल्पनिक चातुर्य की प्रबलता खूब, भौतिक सुखोपभोग की अनुभूति की रीत भी अनोखी। भौतिक सुख उपभोग के लिए तूने बहुत खोजा, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही रास्ते की बाधाओं को हटाकर संहारक अस्त्र और शस्त्र तूने ही बनाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

मैंने पूछा नदी से, तुम्हारा मजहब? नदी कुछ भी नहीं बोली, बहती रही चुपचाप। कुछ पत्थर आए थे नदी की राह में, नदी अगल बगल से सरक कर आगे निकल गई। कुछ देर बाद पूछा मैंने, तुम्हारी भाषा नदी? नदी तब भी कुछ नहीं बोली, बस बहती ही रही। मैंने पहला प्रश्न 1947 में किया था, दूसरा 71 के आसपास। पहली बार मेरे दो टुकड़े हुए थे, दूसरी बार मेरे टुकड़े के दो टुकड़े। किसी भी देश का विभाजन इसी तरह उसकी माटी से टीस बनकर उभरता रहता है। 200 साल पराधीन रहने के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी प्रसन्नता, कितने गौरव का विषय होगी, ये सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात कुछ अलग ही अनुभूतियों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़े में बांटकर आजादी की वो तस्वीर बनाई। जाहिर तौर पर भारत विभाजन की ये फांस भारतीयों के मन में धंस गई। जिस अधिनियम के तहत भारत आजाद हुआ उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक अधिनियम जिसके प्रावधानों के दूरगामी परिणाम हुए। इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। वो भारत जो सदियों से अपनी भौगोलिक और आत्मिक अखंडता का परिचायक था, इस अधिनियम ने उसकी जमीन पर बंटवारे की लकीर खींची। बरसों के संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी की भोर जाग रही थी। अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों के संकल्प से परिचित करा दिया था। स्वाधीनता संग्राम का उत्तरार्ध आते आते अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो निर्णायक साबित हुईं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का झोंका जाना, आजाद हिंद फौज का पराक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती लोकप्रियता, सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह और रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा किया गया नौसेना विद्रोह, ये वो तात्कालिक घटनाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की याद दिला दी थी। इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और इसी लाचारी में उन्होंने भारत की आजादी तय की, लेकिन इसके साथ ही भारत विभाजन का षड्यंत्र भी रचा। 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया। लेकिन भारत अब आजाद था। इस अधिनियम ने भारत के एक नवीन युग की शुरुआत की। इसके बाद ही स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास आरंभ हुआ।

वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था। इसके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। 3 जून 1947 वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बनाए जाने की घोषणा की गई। माउंटबेटन के इस फैसले ने लाखों लोगों को अपने देश में ही शरणार्थी बना दिया। इस घोषणा के बाद करीब 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। दंगों में लाखों लोगों की मौत हुई और आजादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को देश दो भागों में बंट गया। इसकी पृष्ठभूमि में था वो डिकी बर्ड प्लान, जिसे मई 1947 में माउंटबेटन लेकर आए थे। इसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना गया। इस प्लान के तहत माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि देश के सभी प्रांतों को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, फिर उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया जाए कि वो संविधान सभा का हिस्सा बने या न बने। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर दो देश बनाया जाए और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस योजना पर अंतिम मुहर लगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ और इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। ये वो समय था जब अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी के इस देश में चारों ओर अशांति थी, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे और उधर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक संघर्ष और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं थीं। इन परिस्थितियों में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान ऐतिहासिक थे, जिनके प्रभाव को आने वाले समय ने सहा। इस अधिनियम ने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं ये दायित्व संभाला। दोनों देशों को ये शक्ति दी गई कि वे अपने देश का संविधान बना सकें तथा किसी भी देश के संविधान को अपना सकें। संविधान सभाओं को ये शक्ति भी दी गई कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त करने का प्रावधान दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटेन की शाही

प्रावधान दिया गया कि बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाए तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। इस बंटवारे में भारत के हिस्से आया मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, अजमेर, मीरवाड़ा और कुर्ग प्रदेश, और पाकिस्तान के हिस्से में आया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम का मुस्लिम क्षेत्र। इसके साथ ही रियासतों को ये छूट दी गई कि या तो वो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या यथास्थिति में रहें। इस प्रावधान में छिपी थी गहरी उथल पुथल और छुपा था चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य।

विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित और दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव स्पष्ट था। साथ ही ये योजना भी नहीं बनाई गई थी कि विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। कुल मिलाकर जाते जाते भी अंग्रेज समस्याओं का एक वटवृक्ष बो गए, जिससे उबरना अत्यंत कठिन था। दोनों देशों की सीमा निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जिस सीमा आयोग का गठन किया गया, उसकी घोषणा में भी अनावश्यक देरी की गई। माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये सोच थी कि इससे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। जब भारत आजाद हुआ, तब देश में 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। रियासतों में बंटे इस भारत का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृहमंत्री थे। सरदार पटेल ने रियासतों के विलीनीकरण के लिए दूरदर्शिता, सामंजस्य, जनता का दबाव तथा धमकी, इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया। भारत के हिस्से आए रजवाड़ों ने एक एक कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, या कहें कि सरदार पटेल और वीपी मेनन ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, तो उधर कश्मीर स्वतंत्र रहने की। लेकिन सरदार पटेल की संकल्प शक्ति और सूझबूझ से ये चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। बहुत कम समय में भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश का एकीकरण सरदार पटेल की अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अपने इस योगदान के लिए वो भारत के बिस्मार्क कहलाए। भारत से जाते हुए भी अंग्रेजों ने समस्या खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर की समस्या से भारत लगातार जूझता रहा, लेकिन ये वो भारत है जिसमें अपने सभी प्रांतों के लिए एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के ध्येय को पूरा करने का सामर्थ्य है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम कानून था, एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिसमें भारत की आजादी का ऐलान था, लेकिन देश के विभाजन के साथ। अंग्रेजों की फूट डालने की एक ऐसी चाल जिसका खामियाजा पीढ़ियों ने भरा, लेकिन बावजूद इसके भारत की सनातनता और इसका अखंड स्वरूप सदैव स्थापित रहेगा, और निश्चित ही हमारी इस अखंडता के सम्मुख विश्व समुदाय नतमस्तक होता रहेगा। जय भारत, जय हिंद।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गुलजारी लाल नंदा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है सियालकोट। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से शरद गुरमीत, जलगांव महाराष्ट्र से आदर्श कुमार खले, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा और जबलपुर मध्य प्रदेश से दीप्ति सिंह। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको मेल द्वारा भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-908-908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 777-908-908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM.
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट. म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसने.
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू. सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स. उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्र मागे जळगाव.
3: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, आज की दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है. चारों तरफ उपदेश देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले और शास्त्रों की व्याख्या करने वाले लोग भरे पड़े हैं. हम भी रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इतना सब कुछ जानने और सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? हमारे भीतर की अशांति, हमारा क्रोध और हमारा लालच वैसा का वैसा ही क्यों बना रहता है? वजह साफ है, हम सिर्फ शब्दों के बाजार में जी रहे हैं. हमने उस ज्ञान को कभी अपने भीतर उतारा ही नहीं. कबीर साहब आज हमें इसी कोरी बातों की दुनिया से बाहर निकालकर अनुभव के उस सागर में ले जाने आए हैं, जहां पहुंचकर हम हर प्यास बुझ जाती हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम दार्शनिक सूत्र. कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझे काल. कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझे काल. कबीर प्याले प्रेम के, भरी भरी पीवे रसाल. कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझे काल. कहत

0: के भरी भरी पीवे रसाल रे साधो भरी भरी पीवे रसाल। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं कहत सुनत जग जात है, यह पूरा संसार से कहने और सुनने में कोरी बातें और सिद्धांतों की चर्चा करने में ही अपनी पूरी उम्र गवा रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन जीवन के सच से कोसों दूर हैं। नतीजा क्या होता है? विषय न सूझे काल, वे संसार की विषय यानी विषय वासनाओं और भौतिक सुखों में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने सिर पर मनराता हुआ काल यानी मृत्यु का सच दिखाई ही नहीं देता। वे भूल जाते हैं कि समय तेजी से बीत रहा है। लेकिन जो सच्चे साधक हैं वे क्या करते हैं? अगली पंक्ति में कबीर अपना अनुभव बताते हैं, कबीर प्याले प्रेम के। कबीर कहते हैं कि इन व्यर्थ की बातों को छोड़कर मैंने तो उस परमात्मा के प्रेम का प्याला थाम लिया है। भरी भरी पीवे रसाल, और मैं उस रसाल यानी आनंद से भरे हुए रसपूर्ण प्रेम के प्याले को भर भर कर पी रहा हूँ। मेरी चेतना अब उस परम आनंद में डूब चुकी है। अगर हम इसे दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा शाब्दिक ज्ञान और आत्मानुभूति के अंतर को रेखांकित करता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा न तो बहुत प्रवचन देने से मिलती है और न ही बहुत बुद्धि से, वह तो केवल अनुभव का विषय है। विषय न सूझे काल, विषय न सूझे काल का अर्थ है कि जब मनुष्य केवल बुद्धि के स्तर पर जीता है तो उसका अहंकार और उसकी वासनाएं गहरी हो जाती हैं जो उसे मृत्यु के सत्य से विमुख रखती हैं। कबीर समझा रहे हैं कि परमात्मा को जानना कोई दिमागी कसरत नहीं है बल्कि यह तो हृदय का मार्ग है। जब तक मनुष्य प्रेम की उस भीतरी रस को नहीं चखता तब तक उसका सारा ज्ञान केवल राख की ढेर की तरह निष्प्राण है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद को टटोलिए कि कहीं हम भी सिर्फ कहत सुनत यानी बातों के जाल में तो नहीं जी रहे हैं। हम दूसरों को जो उपदेश देते हैं क्या हम खुद पर अमल भी करते हैं? इस संसार के भौतिक विषयों में उलझकर कहीं हम उस काल के चक्र को तो नहीं भूल गए हैं जो हर पल आगे बढ़ रहा है। आज कोशिश कीजिए इन कोरी बहसों और चर्चाओं से ऊपर उठने की, अपने भीतर उस परमात्मा के प्रति, उस सृष्टि के प्रति प्रेम भाव जगाइए। जब आप प्रेम के उस भीतरी प्याले को चखेंगे तो संसार की कड़वाहटें और वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अपनी चेतना को उस आनंद के रस से सराबोर होने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खानदेश, आपली मानसर।
2: हे मानव, इस भूतल पर सैकड़ों सहस्त्रों जीव जंतुओं के समान तेरा भी जन्म हुआ, तथापि इस संपूर्ण विश्व में मनुष्य का जन्मदाता कोई तो एक, यह सिद्धांत ही मूलतः भ्रामक कल्पनावादी कर्मकांड को बढ़ावा देने वाला, निरर्थक कल्पना को दौड़ाने वाला अविवेकी। इस संपूर्ण विश्व में एक मेंढक का जन्म हुआ और फैल गई चारों ओर मेंढक की औलाद। इस संपूर्ण विश्व में एक मच्छर का जन्म हुआ और फैल गई चारों ओर विश्व में मच्छरों की औलाद। ऐसे सैकड़ों सहस्त्र पशु पक्षियों की उत्क्रांत उत्पत्ति काल्पनिक पद्धति से परखना, उसे सैद्धांतिक रीति उद्घोषित करना सरासर गलत है। संपूर्ण भूतल पर प्राकृतिक रीति प्रमाण रूप से निर्मित अनगिनत पक्षी प्राणी जीव जंतुओं का जन्म हुआ, कुछ एक समान कुछ भिन्न, मानव का भी ऐसा ही कुछ नाम रूप का संयोग। इस भूमि पर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न डीएनए के प्रत्येक प्रदेशानुरूप निसर्ग नियम स्वरूप रंग रूप तुझे भिन्न भिन्न दिखते रहे। प्रदेश के प्रकारानुरूप कोई काला गोरा नकटा चपटा ऊंचा बौना, परंतु सब मनुष्य ही तेरे आचरण और उच्चारण से अभिव्यक्त हुआ बोली भाषा का आविष्कार, तेरा आदिम शब्द स्वर, इसलिए हजारों बोलियों का जन्म हुआ, कुछ प्रमाण भाषा बनकर स्थापित तो कुछ ऐसे हजारों बोलियों के लाखों करोड़ों लोगों के उच्चारणों से निर्देशित किया नाम नामाभिधान विविध घटकों स्थलों प्राणियों पक्षियों के तूने उच्चारित किए नाम, विभिन्न पशुओं फसलों के वही वही नामाभिधान, उनकी अपनी अपनी भाषाओं में रूढ़ होते गए, तब जन्मदाता निसर्ग का संवादी माध्यम परख परिचय का माध्यम तू ही बना। विविध भाषाओं में अभिव्यक्त संबोधन के रूप नहीं दिए तुझे किसी अदृश्य शक्ति ने रूढ़ बनाने के लिए, तू ही बना उनका नामोल्लेख करता जन्मदाता। तेरे सामर्थ्य के बल पर तूने संपूर्ण विश्व को जोड़ दिया, यातायात की शुरुआत हुई, व्यवहार और विचारों का आशय प्रकट होने लगा, मनुष्य मनुष्य का मेल मिलाप प्रदेश की सीमाओं का उल्लंघन करने लगा। आर्थिक स्थैर्य के लिए मनुष्य ने प्रदेश बदल दिए, राज्य बदल दिए और देश भी बदल दिए, और लेन देन हुआ विचारों संस्कारों संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ, कुछ काल्पनिक कुछ वास्तविक तो कुछ व्यवहारिक अस्तित्व के। हे मानव, तेरा बुद्धिवाद प्रबल, तेरी काल्पनिक चातुर्य की प्रबलता खूब, भौतिक सुखोपभोग की अनुभूति की रीत भी अनोखी। भौतिक सुख उपभोग के लिए तूने बहुत खोजा, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही रास्ते की बाधाओं को हटाकर संहारक अस्त्र और शस्त्र तूने ही बनाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

मैंने पूछा नदी से, तुम्हारा मजहब? नदी कुछ भी नहीं बोली, बहती रही। पूछा मेरी भाषा, नदी नहीं बोली, बस बहती ही रही। मैंने पहला प्रश्न सन 70 था, दूसरा 71 के आसपास। पहली बार मेरे दो टुकड़े हुए थे, दूसरी बार मेरे दो टुकड़े। किसी भी देश का विभाजन इसी तरह उसकी माटी से टीस बनकर उभरता रहता है। 200 साल पराधीन रहने के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी प्रसन्नता, कितने गौरव का विषय होगी, ये सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात कुछ अलग ही अनुभूतियों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़े में बांटकर आजादी की वो तस्वीर बनाई। जाहिर तौर पर भारत विभाजन की ये फांस भारतीयों के मन में धंस गई। उसका नाम था स्वतंत्रता अधिनियम 1901। प्रावधानों इसीलिए 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। वो भारत जो सदियों से अपनी भौगोलिक और आत्मिक अखंडता का परिचायक था, इस अधिनियम ने उसकी जमीन पर बंटवारे की लकीर खींची। बरसों के संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी की भोर जाग रही थी। क्रांतिकारियों ने दी, अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों के संकल्प से स्वाधीनता संग्राम का उत्तरार्ध आते आते अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो निर्णायक साबित हुईं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का झोंका जाना, आजाद हिंद फौज का पराक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती लोकप्रियता, सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह और रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा किया गया नौसेना विद्रोह, ये वो तात्कालिक घटनाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की याद दिला दी थी। इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और इसी लाचारी में उन्होंने भारत की आजादी तय की, लेकिन इसके साथ ही भारत विभाजन का षड्यंत्र भी रचा। 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया। लेकिन भारत अब आजाद था। इस अधिनियम ने भारत के एक नवीन युग की शुरुआत की। इसके बाद ही स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास आरंभ हुआ।

वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था। इसके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। 3 जून 1947 वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बनाए जाने की घोषणा की गई। माउंटबेटन के इस फैसले ने लाखों लोगों को अपने देश में ही शरणार्थी बना दिया। इस घोषणा के बाद करीब 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। दंगों में लाखों लोगों की मौत हुई और आजादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को देश दो भागों में बंट गया। इसकी पृष्ठभूमि में था वो डिकी बर्ड प्लान, जिसे मई 1947 में माउंटबेटन लेकर आए थे। इसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना गया। इस प्लान के तहत माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि देश के सभी प्रांतों को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, फिर उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया जाए कि वो संविधान सभा का हिस्सा बने या न बने। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर दो देश बनाया जाए, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस योजना पर अंतिम मुहर लगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ और इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। ये वो समय था जब अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी के इस देश में चारों ओर अशांति थी, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे और उधर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक संघर्ष और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं थीं। इन परिस्थितियों में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान ऐतिहासिक थे, जिनके प्रभाव को आने वाले समय ने सहा। इस अधिनियम ने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं ये दायित्व संभाला। दोनों देशों को ये शक्ति दी गई कि वे अपने देश का संविधान बना सकें तथा किसी भी देश के संविधान को अपना सकें। संविधान सभाओं को ये शक्ति भी दी गई कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त करने का प्रावधान दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटेन की शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। ऐसे अनेक प्रावधानों के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी कि बंटवारे में कौन सा क्षेत्र किस देश के पास रहेगा। अधिनियम में प्रावधान दिया गया कि बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाए तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। इस बंटवारे में भारत के हिस्से आया मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग प्रदेश, और पाकिस्तान के हिस्से में आया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम का मुस्लिम क्षेत्र। इसके साथ ही रियासतों को ये छूट दी गई कि या तो वो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या यथास्थिति में रहें। इस प्रावधान में छिपी थी गहरी उथल पुथल और छुपा था चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य।

विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित और दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव स्पष्ट था। साथ ही ये योजना भी नहीं बनाई गई थी कि विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। कुल मिलाकर जाते जाते भी अंग्रेज समस्याओं का एक वटवृक्ष बो गए, जिससे उबरना अत्यंत कठिन था। दोनों देशों की सीमा निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जिस सीमा आयोग का गठन किया गया, उसकी घोषणा में भी अनावश्यक देरी की गई। माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये सोच थी कि इससे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। जब भारत आजाद हुआ, तब देश में 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। रियासतों में बंटे इस भारत का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृहमंत्री थे। सरदार पटेल ने रियासतों के विलीनीकरण के लिए दूरदर्शिता, सामंजस्य, जनता का दबाव तथा धमकी, इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया। भारत के हिस्से आए रजवाड़ों ने एक एक कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, या कहें कि सरदार पटेल और वीपी मेनन ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, तो उधर कश्मीर स्वतंत्र रहने की। लेकिन सरदार पटेल की संकल्प शक्ति और सूझबूझ से ये चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। बहुत कम समय में भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश का एकीकरण सरदार पटेल की अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अपने इस योगदान के लिए वो भारत के बिस्मार्क कहलाए। भारत से जाते हुए भी अंग्रेजों ने समस्या खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर की समस्या से भारत लगातार जूझता रहा, लेकिन ये वो भारत है जिसमें अपने सभी प्रांतों के लिए एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के ध्येय को पूरा करने का सामर्थ्य है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम कानून था, एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिसमें भारत की आजादी का ऐलान था, लेकिन देश के विभाजन के साथ। अंग्रेजों की फूट डालने की एक ऐसी चाल जिसका खामियाजा पीढ़ियों ने भरा, लेकिन बावजूद इसके भारत की सनातनता और इसका अखंड स्वरूप सदैव स्थापित रहेगा, और निश्चित ही हमारी इस अखंडता के सम्मुख विश्व समुदाय नतमस्तक होता रहेगा। जय भारत, जय हिंद।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गुलजारी लाल नंदा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है सियालकोट। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से शरद गुरमीत, जलगांव महाराष्ट्र से आदर्श कुमार खले, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा और जबलपुर मध्य प्रदेश से दीप्ति सिंह। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको मेल द्वारा भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-908-908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 777-908-908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।